समाद रूप समाद रंग समाद नांगे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद सरती विस्माद खानी विस्माद स्वाद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।

इस माए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया ओनी मंदै पैर न रखियो कर शुक्र कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सवाया वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरिज उत्पुजा खानी सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख सुना प्रवान लख तप प्रतीस्था सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रन में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बरस बरस, परी है जेते मास, परी है जेती आरजा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पवया ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, बिन नावे किछ खाए न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी।

सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आप उन्दे से ते ने केवल हो मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माथो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दैस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा फल करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकीले, गया जाने जी की किछ पुन दान करे।

होए, नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला। लब पाप दे राजा मेहता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो वह कट ना कोई आखे पर परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता कह वच किच नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल लै इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग

न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत, जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा, एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा। आत्मा बास देव जे को जाने भयो। नानकता का दास।

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। परवा हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गया हारी है, पढ़िया अते हो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अगै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अगै रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अगै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आठ साथ रहे, सबको सच समावे रिक कह रहा परपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पा।

मैं वेद अथर्वा हुआ नाव खुदा हल हो गया। नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठान ही अमल किया। चारे वेद हुए सचार पड़े गुणे तीन चार विचार। पाओ भगत का नी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी। सदगुरु विट्टो वारिया जित मिले खसम समा लिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया।

नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का पेड़ पोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील बस्तर पहर होवे प्रवान मलेख तान ले पूजन पुराण अपरख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत भिटे वे मत भिटे यो अन असादा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवडे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सुरे सुर तंदे लाएंगा नगर उपठी जे करे सुल्ताना का उतर आएगा घर मंगन पिख ना पाएगा श्लोक पहला पहला जे मुहा का घर मुह है कर मुह पितरी दे अग्गे वस्यानिये पितरी चोर करे वडिया हत दलाल के मुस्मी ए करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला ज्यो जो रू सिर नामनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वस है नित नित होए ख्वार।

देवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों पालिए, मंदा मूल न की चई दे लम्मी नदर निहालिए, जो साहिब नाल न हारिए।

आँख सुन न पाए साध, आप गवाए सेवा करे ता किच पाए मान, नानक जिसनो लगा किस मिला है, लगा सो परवान महला दूजा, जो जी होए सो गुवे मौका कह आवाओ, बीजे बिख मंग

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पावड़ी, नानक अंत न जापनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार।

जगत पिता मेरे मन पाया, हों पूत तेरा तू बाप मेरा, एक है ठाहर दुहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद में सब किस सूझिया, आशा इकत पत्तर पर उरकट कुरकट, इकत पत्तर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू, राव सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी, हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओह हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे, नाको काटी कानो काटी काट।

प्रमना लुंजत मुंजत मोन जता कर अंक कऊ मरना सांसे सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सोबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहूँ ना उबरना कहो कबीर यो रामे जंपो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे

पर्वत छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक पोज से द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे।

चलाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता को काको कवन पुरख की जोई, हट कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो पैसा गर कहताई, इस बंदे से जुल्म हो

एक चौके संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहा। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब सिंजोई। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु प्रसाद पावे अमृत तारा। कहो कबीर नगर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आशा बाती सूखी तेल निकूटा, मंदल ना बाजे नट पैसूता। बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रह रहा एक अगर

पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तप ना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए लह न गयो, आई तलब गोपाल।

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राक्षन को दिया, मुगद कहे तन मेरा, जम कर बंड मुंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पा

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बा कठी पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ बिचारे। कलमा अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे।

हाथी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाता। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्तर, आप अपने प्रमते। थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पे दस बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी। जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ। सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई। सर्पनी ते आन छूच नहीं अबरा, सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा। ए सर्पनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई। ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहाँ स्वाम को सिमरत सुनाए, कहाँ साकुत कह हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है, साकुत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट सा।

वासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला

रहाया। दस मास माता उधर राख्या, बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया। रहाओ बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया। जहाँ जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया। जीवने की आस कर है जम निहार सासा। बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हूँ, पांचों तत्व बराती। राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म के रंग राती। गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा। रहाओ नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना। कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिरह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम बिसारो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं देखो, ये दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप साव का करे लड़ाई, माया सब मतवारी। बड़े भाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबू न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर सौ मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी कृष्णा गागर फूटी काम चोलना पया है पुराना गया परम सब छूटी सर्व पूत एक है कर जानिया चूके बाद विवादा कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा आशा रोजा करे मना।

में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर, फिर जा लियो बिचारी, हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कह कबीर पुकारी। आशा ते पिता

रहा कहो कबीर जब लहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया ना हो ले राखियो राम जनिया ना हो इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट काडे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुण गाय कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म व्यतीत आशा करवत पला ना करवट।

मरम न जाना, सब जग आंतम आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना, तरन आकाश की करज है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना, कहत कबीर कार गह तोरी, सूत है सूत मिलाए कोरी, आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाए, हर का संत मरे हाड़म बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक।

जागत ही मन मानिया। कहत नाम दियो हर की रचना, देखो हृदय बिचारी, कट कट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। आशा आमीले कुंभ पराईले उदक, ठाकुर को

का मन मेरो गजी जिहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम।

आ जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सर्ण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मक्तूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस की।

चरण अरविंद पान मन पान करत पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन होत ना तेरो जन प्रेम की देवरी बांध्यो तेरो जन कह रविदास सूत गो।

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भये। जोत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

आशा बोले शेख फरीद प्यारे अने लगे इव तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मिलावा शेख फरीद काकिन कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए तुम ना आइए क्योंकि दुनिया लग ना आप वंजाइए।

कीचे नाम त्याये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई। जे लोचे सब कोय पूरे की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे। सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई। कह नानक हर

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजे रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सु रह समाए। सिर मुकते जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीर्थ तिस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुरु मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कतनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस पास

सुमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह है। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा।

प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्द है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा।

राम जीवाया हम हो गए लाले गोले गुरसिखा के जिना अंग दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिनो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे।

पाई रे मोह को कोई आय मिले हर नाम दृढ़ावे है। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ। नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम है हर सोचित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जो पहले लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाजीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी मेला चौथा कर की जा। माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई जिच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई तेजन नानक राम नाम लिवलाई।

ते संसारी अंतर मेल न उतरे हूं मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेत बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी मैला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो मन।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर प्रकार खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो गो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के सन बंग सेन साथ, चित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण ना बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया, पै पंजन हर राया। साध के चरण

काम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पैर हर के गुण गावे, भगत प्रेम रसमाता,

सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारो। जाने कौन पता सुई बरंच अर सगल मोन जन गह न सकाए गता। प्रभु की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए। बकन कथ रहता रहाओ आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता। नानक को प्रभु पूर रहो है एचो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो। जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभु को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय। जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो। सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला। संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श।

सतगुरु मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिद माह समाये तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

कपटे अनित जुगत कर कायो, बिसरत प्रभु के ते दुख गनिये महामोनी खायो। करो अनग्रो स्वामी मेरे, गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपा।

मिटै सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत मीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल प्रभ ऊंचा शरण साधु जोग। किस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी मैला पंजवा अपना गुर सेव सद ही रमो गुण गोविंद। सास सास आराध हर हर।

नाम साथ सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी।

योग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ

तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

मोख मुकत सो पाए चेतो बास दियो मनवाली राम हृदय जप माली राव उर्द मूल जिस साख तलाहा चार वेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला सुन सुखवंते नानक।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रवदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिन सुख पाये तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार।

ताको काल नहीं जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर ते नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक अमृत।

पत्ताई पाई रे राम नाम चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर पगत।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे जो तिस पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बिन निफल।

दया कर रव्या, गुरमते प्रमन चुकाई, पारस पेट कंचन तात होई, सब संगत की बढ़ियाई, हर जल निर्मल मन स्नानी, मज्जन सतगुरु पाई, पुनरप जन्म ना

पगत प्रेम अराधतं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल बिनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर शरण।

तं गुर शब्द हर रमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित्त वित्त ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म ब्या

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर बिन जियरा रह न सके, ज्यो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये, अपने सतगुर के बलिहारी, मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये, जिनको कृपा तुम्हारी।

तोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अवर

राजन में तू राजा कहिए, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उस्तत कवन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा रहाओ।

प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध।

जात। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पा

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी। अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

सो जाए। होमे मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले होमे गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हों मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग इवेहा जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाई है हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सरना।

केसनो कूड बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, होता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए।

ने हर सुखदाता मन वसै हों में जाए गुमान नानक नदरी पाई है ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अनदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अनदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्या

आए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए नानक मन ही ते मन मानिया ना किछ मरे न जाए पौड़ी काया कोट अपार है मिलना संजोगी काया अंदर आप वस रहा आपे रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएदा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया कर्म प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करे सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी। उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुरु शब्दी खोलायन हर नाम जपानी। हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यों लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह।

जात ना जायसी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले। त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी। हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय। हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय। हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जय। हर के तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जय। हर का पाणे

जाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे, हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाहो गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाहो जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाहो गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाहो पावे। नानक वाह वाहो जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणिए सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना को।

अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईयां।

सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो, महल पगति कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। पौड़ी, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई, जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा, आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी, आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरनाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा।

आए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी, अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएं वज, नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याइन बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याइन इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

चार पाव दो सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है जन भगतन को कहो ना मान।

दोनों पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनेक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेही तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई जिस तू देवे तिसे बुझाई। जिस तू देवे तिसे बुझाई सतगुरु मिले।

मले ना लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो, रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा, बिक अमृत बसे एक

कहे रविदास कवन गत मोरी, गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ, कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुरबिन तप्त न पाया, काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे।

अंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बतावो मार्गी, हम पीछे लाज चली रहाओ, प्रिया के बचन सुखाने ही रे, ये चाल बनी है पली, लतरी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर कुल मिली।

मेरे मन मुख हर हर हर बोलिए, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोलिए रहाओ, हौ सिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोलिए। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोलिए, गुर प्रसाद।

पूरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ करन ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम पर्यो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय

ते बिगड़ रूप बेरखी ज्यो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती नानक पतित पवित्र मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती छक्का पहला देवदंदारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाय है काट अब झट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है पुस्तक करे सेवक मुन के ते तेरा अंत न कतहु पाइए सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए देव गंदारी माई होन हार सो होई है राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो कह फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है कब मुँह मैल परे अभिमानी कब साधु संग तोई है कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है देव गंदारी माई सुनत सोच पै डरत मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत निमख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता।

पूरे मनोरथ साध संग तद लभू देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद परम धार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पार्यो चिंता रोग विदार्यो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विसार्यो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधार्यो देव नारी मन सगल स्यानक रही कर्म कराउन हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ आप मेक पय शरणाई इन मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही खिन में खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दो करोगा प्रभ दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते देव गंगा।

संसी काटिया जीवदान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी तरम तरम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाड़ श्यान तो संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लहा।

गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज विचार्यो हर संत जना कह आहा। तिना प्राप्त एव निधाना जिनके कर्म लिखा। से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा। सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा। देवनारी महला पंजवा मन कह अंकार अफारा। दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

आंजे गोंग पिंगल मत हीना प्रव राखो राखन हारा करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभु नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रे करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंज बिलाते का

चंदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर वस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गनारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिक न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे।

कहारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया।

बहु व्यंत अत बड़ो बाहर खाहा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाई है मन रूचा खोज असंख्या अनेक पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव। गंधारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो। गुरु शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर मृद पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान। रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। इको अंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला।

निरंजन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहीं चित लायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया, हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेड़ा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रब आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुर में लाया मेरी जिंदगी, हर सज्जन हर प्रब पासे राम। तन तन गुरु हर दसिया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम बिगासे राम। राज हागड़ा महला चौथा, अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी। अमृत गुरमत पा

हर हर नाम से आए राम, हर ताज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुध खीरे राम, हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर सह नहीं जाए पाओ मेरी जिंदड़ी, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम, जन नाम थर में लाया मेरी जिंदड़ी, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी, बिख बांधे हो मैं जाले राम, जो पंखी कपोत आप

करिए गुर सतगुर बीच लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आएंगे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोए।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर प्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नानक हर जप

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आ रहे राम। पौन पानी दहसन करो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम

ऐसा हर एक सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब तू साहिब वड्डा आराम जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ करदा आराम गुर सेविया है गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छड़ा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकराई राम मन मुकरा हर

मन तन तन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस में रहा समाए राम सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजिए। आसा प्यासी रैन दिनियर रह न सकिए इक तिले, नाम पयम कै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श ना पा।

अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम निर्गुण निवाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे तम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये नाम स्वयं पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना त्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

पतित उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतित उदाहरण शरण स्वामी कृपा निज दयाला, अंग कूप ते उदर करते सगल कट प्रकट।

मन पर तीक न आया सहज न लगो पाओ शब्द साद न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कै तै पन ना करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सचवत है, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किछ देखे किसे का, जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया, जदों आपे साथ किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आप।

कहे कथे न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किन न पायो पौके मुए बिन लाए गुरु के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग रहे कूड़ करे आहार, दिख मा

तो पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुरु पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या

ले पौड़ी आपे अस्था तीर्थ करता आप करे स्नान आपे संजम वरते स्वामी आप जपाहे नाम आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान जिस दी तेज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चित ना लावई जित सुख वसे मन आए तामस लगा।

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्र लदिया हर नाम तन तेरी। सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे

हर जन सेवक नेड़ ना आवे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, और केकी चक चक आवे जावे। श्लोक महला तीजा, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, अब मैं अगोचर

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ

हुकुम को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला की जा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेखी जोग न होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए पौड़ी।

सतगुरमुख को हर दिया, सतगुरमुख को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए। दूजे पाए करूपी दुख पावे, आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वरते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला। बड हंस महला तीजा गुरुमुख सच संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हौ क्यों मिला मेरी माया हौ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हौ हर प्रभ छोड़ दूजे।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण बस

रहाओ। लाख भगत जा को आरा दे, लाख कपि सर कपि सा दे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको देई जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिसे जनावो तिन्हे तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवा,

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रव दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ पै निहाला जत कट पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पन...

विस्मा रहाओ। खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन।

बाद मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे ये सो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भूख न उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

ऐ सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जां सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरसा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

सच तुने सच शब्द विचारा, अंजन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विचों बल जाओ, दासन दासा हुए।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाये मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आइए नाता को प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप।

चित चढ़े सवाया, एक करम तरम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हौ बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जब

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

बंके लोएन दंतरी साला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप भाणी तिच मन की पूरिए सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक।

सतगुरु प्रसाद। अपने पिर के रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर सियो निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वेख हजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे, नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदर नाम वखाने कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हौ मैं मार मुइये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुइये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए।

शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला आंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जां चले सतगुरु पाए वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वक्त ना पाल, जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई, मन मुख अंधले ज्ञान में होने दूजे पाए खुआई। बिन नामे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा, सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा। नामे नौ निध पाई मन मुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे दूजे पत गवाई। हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडपागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नहीं चल अच्छा।

अपागे नानक सहजे सेवें गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन जिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आग बुझाए लाहा भगत है सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई।

पथ कोई पढ़ पढ़ पंडित वाज बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यों तिस दी वड्याई राम ज्यों तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम बनजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है केवा पारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय नानक नाम रते से निर्मल होर हौं मैं मैल परी जय पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करें पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया केवा पारा राम माया केवा पारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख्यों लागा बिष्टा माए समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मुए गावारा माया मोह मन रंगिया मोहे सुध ना काई राम गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवे सोई बूझे सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर के

आपे सच्चा बख्श लए, फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा, गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई, सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा, नानक नाम रते से सच समाने, बहुर न पवजल फेरा। माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई, जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई, मनमुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाए, जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया, कर मैं निज कर पाया सतगुरु दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

राम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाध लगाई।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना

तिन नेफल तिन नेफल जन्म सब बिरथा गवाया राम। नेफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे। कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श ना करियो जिनी हर हर नाम ना प्याया। जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया। हम चात्रिक दीन

मार बिलारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै सा तन सा वासै, तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए, मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे, मिल संत जना जंग आई। जन नानक हर वर पाया, मंगल मिल संत जना वर।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

ठाकुर माने सो प्रधाने हर सूची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान। श्लोक देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणिया नानक सफल जन्म जय सत उठा सच धनी संत तिन खनिए वंजा जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम जन चास अघाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

काट काट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाए कोई ना सके पहुंचा, आप उपाय आप

आप निरालम तंदै बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

सा तन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग, अंदिन रस भोग, सा तन मैल समाणी।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर नाम।

पुरुषविदाता, हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

बंगप है पाई जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विचर चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई फिर पछोतावे हर के दास सुहेले भाई।

सतगुर मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई,

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना ही विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उभरे भाई।

राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, और सुख नाही,

अब न आया संध्या तर्पण करें गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुरु सेवे सोवड भागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा कृपा से विचों आप गवाए यो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग न पाए।

कोई बातें बात रखी हट अपने जिस पावे किस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगे जापे से सूरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रैगुण माया परम पुलाया हों में बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा हों में विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई त्रैगुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करे सो होई नानक राम नाम निस्तारा सब देहों में खोई सोरठ महला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वर्तना प्यारा आपे आप अपाहो वणजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उजड़ पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़े लाहो आप कराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पक्षण पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहे था प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवर न कोए सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिजक समाहदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिया प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड अवर न कोए सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथापे आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेखे प्रभ आपे आपे वंचन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप करे प्रभ आपे आपे जाल वकायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप वजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही सब तापे आपे सदगुर आप है चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे
आपे आप सलाहुंदा प्यारा जन नानक हर रस त्रापे सूरत महला चौथा आपे कंडा आप सराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहु आपे वन जारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुरपुरे मीठा लाया रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वसदा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाइंदा प्यारा बन बकरी सी हडाया आपे काश्त आप हर प्यारा विच काश्त अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा पै अग्न ना सके जलाया आपे मार जीवाइंदा प्यारा सह लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे कारे लाया जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सोरठ महला चौथा आपे सृष्ट उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप निताणिया तान है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत्संगत मिल त्याय तू हर हर बहुर न आवन जान रहाओ आपे ही गुण वर्तदा प्यारा आपे ही परवान आपे बच कराएगा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वर्तदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है प्यारा आपे देवे दान आपे सेव कराएगा प्यारा आप दिवावे मान।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

जन नानक अवर न कोई, सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी, जा सबको कीता होसी, जो जो दी सै वडा वडेरा सो सो फाकूरा।

तू सर्व जिया दयाला सब किच कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिससे सब किछु होए गुर पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न खोए रहाओ। नाम विहुने पच होए भाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाईए भाई साचा अगम धनी। आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणि गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। सिमरत साखत सो दिया भाई बिन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई

हो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना न बिचरे मोत चसाई रहाओ रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बतना यू जानो जैसे पवन चुलाई कोट पराध अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा पेट्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहज।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण परावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

ते जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहां सुख आगे मुख उजल जन का संगवड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोह गृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही सोरठ महला पंजवा सर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकी तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण सूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अभाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जिस पय दयाला ताको मन ते बिसर न जाई सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो कर्म पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहु बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू उधारा कहो नानक गुर बिन नहीं करिए यह पूरन सत्य बिचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त फुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई करण कारण

प्रभु शरणा प्रभु ते पले संजोगा प्रभु बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरु पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम पोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाथा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

मन तै को देखा सुन मीता हूँ तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी हर्ग जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर

सागर सर्व घटाबर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेअंत हौ मित्र वर्णो क्या जाना होय कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देव उपदेशो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक।

से भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर से हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना सेजन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनबाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सै पकरी संतन के।

मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो क्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम से अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साग लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करण हार तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै स्रोते हर नामा

कै मन पावे, उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम सागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सभा से आये, सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई।

तेरा सज प्रेम भगत प्रभु मेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अधाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जब तक समझम ज्ञान तत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगर

दाता कहो नानक प्रभु कृपा तारी मन तन पै बिगाता सूरत मेला पंजवा करण करावण हार प्रभु दाता पार ब्रह्म प्रभु स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभु अंतर जामी।

ते हाथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु चाया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अविनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हूँ मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, पर बारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, अब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाए।

आई कथा कीर्तन सुखदाई गुर पूरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी हर साचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाय रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो कब हुआ बेली सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहाँ बताओ सारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहा सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी।

दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा समान।

कर्म चुकायो स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जाके सिमरण होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

होरठ मैला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ विसर नाही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड़ पागे जन नानक कतह न पावो सूरत महला पंजवा जा के सिमरन सब कछ पाये बिरसी काल न जाये किस प्रभ त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिले।

जब जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत फरमल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन।

रो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण सरण।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे रिद पी

दून चौनी दे वड्याई सोभा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महल।

जवां। संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख विनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

प्रभ अपने पै दयाला, नानक बिघन न लागे को, मेरा प्रभ हुआ कृपाला। सोरठ महला पंजवा, साधु संग भया मन।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

पत रास राख ले हो पाई मेरे को तब आगे अरदास रहाओ जो मांगो सोई सोई पाओ अपने

गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਬਾਣ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆ।

कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली रहाओ सतत उदाहरण सतगुरु मेरा मोह तिसका परवासा बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपूरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार पाप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच सबद सत पाखिया सोरठ महला पंजवा तय कृपाल स्वामी मेरे तिथा तय दरबार सतगुर ताप गवाया।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई।

पाई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पे दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवे सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

अपना होयो गुर मेरवाना, आनंद सुख कल्याण मंगल च्यों, कर आए कर इसनाना रहाओ। साची गुर वड्याई, ताकी कीमत कह ना जाई, सिर साहा पात साहा, गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराचत लाथे, मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा, जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा, सब सृष्ट करे

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रस।

सास सास प्रभ त्याये, हर मंगल नानक गाइए। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

दास्ता सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आप

पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद सारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय से आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

सर्व गुना निध गायो सर्व गुना निध रायो रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यागत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणे, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जय।

ऐज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे।

देवें, प्रभ अपने संता देवें, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुध भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रत

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंधिया।

कुर्बाना सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लोड़ा गुरु उबारिया अनद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारे।

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाक रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, हर बात सुनी।

हर आराध सबो किच पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भाग।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सो।

कृपा करे जिस प्राण पट दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया।

अन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पन

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे, ज्यो माता

0: गुरपुरै लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरै तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सूरठ महला पंजवा हर मंत्र

जिसनों बख्श लें मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे, कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साख है, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ शरणाए, जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता, सतगुरता की सरणी पाईए, दर्शन पेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाईए। हर रस पीवो भाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन भाई, नानक की बेनंती प्रभ जी, नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करन करावन हर अंतर जामी, जन अपने की राखे, जय जयकार होत जग पीतर, सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई, तू समरथ शरण का दाता, आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिसे अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे, अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद, पूरन खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन न कतहूं बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने, प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत रहाओ। कर साध संगत सिमर मादो, होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले, मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भज ले जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही राव। दारा मीत पूत रख संपत, तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारे हो, मानस दे लही, नानक कह

कै सम नाहिन एह विद बेद बतावै सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मह बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नामा माई मैं के विद लखो गुसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई।

हार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो।

ओ संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

वतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

दाता गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख से ही जग पांदे हो को काहू को ना ही राव सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कार की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरह मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

लागी। शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय सबद।

एको चेतै मनुआ ना डोलै पावत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रज

वाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

मन हठ कार कमावनी पाए बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारिय पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिख्या नो लो भाई नाम समाले सुख वसें भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा के कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपाल।

करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ, जिस पर तीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हौ तिसके बल जाओ, ओ निर्गुण यारे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटिये पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला परपूर, सास गिरास ना विसरे पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा परपूर, जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मर्दे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार, नानक तिस शरणागति पाई, जे किलबिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया, बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया, जिसनों की तो कर...

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहे विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरणा।

जोग पुंचाए कुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्याण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया।

ज्ञान तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महल।

पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससू का डर किस जे फिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अनत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजै भाए पूरे सतगुर रास

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग ना जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएगा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलब है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हों मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिला।

कहियो हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है पाए मोख द्वार। ए भोजन अलभ है।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड़ पैदी।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए, अंदरों बारों अंधियां सुध ना काई पाए। पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रखते हर नाए। जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही, ना कन पल्ले पाए। पर सके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए, कूक पुकार ना चुकई ना संसा विचों जाए। नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी। हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित तिस हो बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा। पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुगचार, त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंतन मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप

आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया।

जी पाए। सतगुर अपने कर वर्तदा आपे ले मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन

आए बिन सतगुरु नाव न पाये बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुगचार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुख तृष्णा पुख न जाए गुरमुख सब दे रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर पुख ना लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो परवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी हों बलिहारी तिन कहो जो गुरमुख सिखा जो हर नाम त्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किलवित कृथा तन तन सुहावा।

पल का हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

हर पौड़ी हर हर अपनी दया कर, हर बोली बहनी हर नाम त्याई, हर उचरा हर लाहा लेनी, जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हो कुर्बानी, जिना सतगुर मेरा प्यारा अरा दिया तिन जन दे खा लेनी, हो वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैनी। श्लोक महला चौथा। हर दासन से प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वस है जो जंती के वस जंत, हर के दास हर

हों मैं खपे खपाए अंतर लोभ महा गुबारा इनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर कीरत।

खुद आपे सिष्ट सिर जिया आपे सुन गोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए, गड ले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया आप।

बाई जलद बांध तू था प्यो हो नामे ते स्वामी सी बहोरी लंक पपीखण आप्यो हो सूरज करती जा

भिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पुलंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वह सोई कह रविदास।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एक कहत है सच्चे परवदगारा। जो तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक दिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्र नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विन नजरी नानक नहीं कोए, कनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

संसार तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए,

करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप करे सगले कुल तारे दानस बंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मलकोवे पढ़या बूझे सो प्रवान जिस सिर दरगे का निशान तनाश्री मेला पहला करती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सबका टब खानष्ट जग पृष्ट होए डूबता इव जग कल में राम नाम सार अच्छी तमी ते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ आंट से ती नाक पकड़े सूझते तिन लो मगर पाछे कछ न सूझे ते पद्म अलो खतरिया ता कर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साध

पहला भारती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहस मूरत न नायक कोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो किस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम।

ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साथी बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणे, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अख अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

कुमाणी शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए सात नाम वडे आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक सात रते प्रभ आप मिलाए नासी मैला तीजा जग मैला मैलो हो जाए आवे जाए दूजे लो भाए दूजे पाए सब परज विगोई मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई गुर सेवा ते जन निर्मल होए अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ गुरमुख उगरे हर शरणाई राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभु साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभु साचे की साखी कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूण कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध सा दे जन कोई।

सुनाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सब किछ साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सत साचा सत आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तवासरी में लाती जा नावे की कीमत मित कही न जाए।

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर न कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण सब

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। सुना श्री मैला चौथा कर पहला चौक दे।

निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटके उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मिस कह न सके।

लागी। नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा। जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता। हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी। हर हर कथा।

सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हम हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूछ पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनाथी मैला चौथा। हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन ताली।

काली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाते।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

नाद हेत सिर डारे कुरंका उसी हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहो प्राणी माया को लपटाना असरचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला सनातरी मैला पंजवा कर कृपा दियो मोहि नामा बंधन ते छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए।

किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा, सब लगो गुर मीठा, जल फल मई अल।

पयो परदास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पतवस।

पूरन हो तृप्ता में। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी। प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे। बिन हर कहां अगाई रहाओ, दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन। ताकि मिटे न पूखा, उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके। दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए। जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया। ताके चितना बसा रहाओ, मौल्यो मन तन होयो हरिया। एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी। कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो। मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर। तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला। सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया। जो माता बाल गोपाला, तनासरी मैला पंजवा। बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जे हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैत कोट अगनासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

पीत अमृत संग नय रुच आवत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम सुमारे ए विश्राम निद पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक पेखो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निज पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जात पात पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया बूझी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मेला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा

सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जात ताप तमन बसबा कर उर्द ताप लै गैन ए विद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

मंगवा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनसो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्यवा हर हर लीने संतो बार हर के दास

त्रासी मैला पन्यों अधर राखन सितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध कै संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रव तारिया चरण रेन बांछे नित नानक।

गुरु समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया तांते मोह तारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत कयाल पू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस देश।

दिन सजाए जो निमक में है सो अलप सुख पनिए रहाओ। प्रत पाले अप्याओ दे कट ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभु सोई। अचल अछेद अपार प्रभु ऊंचा जा का रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभु जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज खेती कर आओ। अनद मंगल गुण गाओ सहज सुन, नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे। अपदा पई बतीत रहाओ, प्रगट कीने प्रभ करने हारे। नाचन पाजन खाके पर मंगल वाजे, नित वाजे अपने खसम निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार। जय जय कार सगल भू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस त्यों ना लाई हीत, जा को किछ नाही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, सना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कर अठवा दो पदे सिको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जप सत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए नशा कह जा ले रहाओ। निर्तन कौ तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनाश्री मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनाश्री मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे एक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनाश्री मैला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनाश्री मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे ओ अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेक करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ता के उतते उतते आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनाश्री मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा के मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुवर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे में तारी बार तो तैसे ही प्रपाल राव नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जामे संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनातरी मेला पंजवा खिदाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस ना कतहू जात सत गुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासी मेला पंजवा जूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर दिशा तीनों बल अपना सिर ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद, कंस लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शा।

नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सत होवे। तनासी मैला पंजवा औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्य हो हमें सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोखे कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक तनात्री मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम तनासरी मैला पंजवा जन की नी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले उड गए बेकार रहाओ जह जह देखो तें तें स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार करन हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रख

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साधु पूरे। प्रभु बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जी जय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एवो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एवो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा रहाओ। कोई हो आकर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख हुए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाव करो। जे बिद मन को संसा चूके, पौ निज पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो दर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, हावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुते खे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार से

संजोग पाया ताकी है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए पर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनवा ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पे त्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सबद सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हम मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करें आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन टोट न पगत पनारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोई आया जाए सी जियो,

हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुरु परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो एक साहिब दे रहा वाद वदंदे आजियो दे रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहिब सबत सिंजापे साचा सिरजन हारा भगत सो है दरबार सबत सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने पारस पर कै पारस होए जा तेरे मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचे साचे के व्यापारी भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी सनासी संत मैला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख ना मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी तन जो बन आख की छाया बिर्द पै दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी कर का लियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सबाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण तिरस्यो प्रीत प्यारी पिर कर सो है नार जे पिर पावे जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो झूठ अलावे काम ना आवे ना पिर देखे नैनी अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सह समाए तन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रली आला जो बन बाला तिसरावे रंग राती गुर शब्द विगासी सौरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी हम दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा। नगर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे, सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, हम दिन रह लिव लाए ता सहज समावे जियो, सहज समावे ता हर मन भावे, सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे, सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो, माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत रिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम ते

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैस न निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर एबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिबै बड़े आई, अंत न काहू।

हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही राव। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, बारह जोजन छकर चले था देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो, पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक पगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटाओ, माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना, तर्क नचा।

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर्ष्यों पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथंग। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामंग बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा।

रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु हो।

करता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का, अनाज मंगो सब्जी का। गऊ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन सन्ना ले वे मंगी। जैतसरी महला चौथा, कर पहला चौप दे इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया। गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा, मेरे मन पज राम नाम सब अर्था। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पन सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलन था। जैतसरी मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी। माया पुअंग दिख चाखा, हर हर साध मेलो जननी के। हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी। हम परे पाग तुम पाखा, जेवा क्या गुण आख वखाने। तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी। पाखान डुबत हर राखा, जैतसरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे, मेरे प्रीतम नाम पराना। दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जैतसरी महला चौथा। सतगुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा।
हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीट लगाए बा जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा जैतरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा। रहाओ साकत बंद पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साकै, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा, हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुणगाहा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा, हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा, खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत सबद लैलाहा,
गुरमत पंच दूत वस आवे हैं, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभु मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग ओ महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप ओ महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामे संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये, जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्ब निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अलपइयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो, जैसरी मैला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेख प्रभ को नीरो, बेकुमार बेअंत बड़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को, जैसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर।

तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। वैसरी महला पंजवां कल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंक छोड्यो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वंड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहा ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन

पहला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

दान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत सरी मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौ पायो।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा कै मर्दे को विसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

ला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जग तुम्हें हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरज तुहारा जैसरी मैला पंजवा संत कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सुरा

सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया तिस दस प्यारे

क्या है? प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरु पूरा।

चाले हाँ किस चिते या हिक दू हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन।

गवाया, आप गवाया, जय तन पाग मथाने, बहां पकड़, ठाकुर हौ खिद्दी, गुण अवगुण ना पछाने, गुण हार ते पाया, रंग लाल बनाया।

आई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूली है लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया सलोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संची है नानक निभे साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मही अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही।

ऊर्ध्वमुख कुचील विकुल नरक घोर गुबार। हर सिमरते तू ना जले मन तन।

रथ आस दिए रच भले संजो सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जो हर सिमरत तनु।

छतर चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरं।

काज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े।

मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई वडे भाग।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

भोजन भिखम असगाम गुरबोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेवते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गाओ आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगारे।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंग सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। कवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, पाको बिगड़ न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया, तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके गृह में आया, तोड़ी महला पंजवा, कर चौथा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद, रूड़ो मन हर

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहं रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान, रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे। अमृत दृष्ट तारो प्रभु मान, आठ पैर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर, रहाओ दह दिस रव रया जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद दिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल।

तोड़ सियान बहु चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल, सिमर स्वामी अंतर जामी, मानस देखा ए उत्तम फल, वेद बख्यान करत साधु जन, पागहीन समझत नहीं खल, प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पे मल, तोड़ी महला पंजवा, माई चरण गुर मीठे, वडे पाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुरडी थे राव, गुण गावत अचुत अविनाशी, काम क्रोध बिन से मद पीठे, अस्थिर पै सात रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर पजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब चूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, तोड़ी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवे दिन राती, अंकुर पलो हमारा रहाओ, गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गए काड लियो जन अपना, दिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुर न संकट द्वारा, नानक सरन

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। कुन दान पूजा परमेश्वर हर तीरथ तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाय रहाओ। जब चूठे को साज जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सिमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, सहना अनत अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो, रहाओ पंडित होए के देर बखाने, मूर्ख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंग गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हीग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मजे देल गो, माली के कर केल आछे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद आछे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे

चौथा कर पहला दो पद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुन मन अकत कथा हर नाम रुद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ। किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संते किस देवो जिन हर मीत मिलायो। किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हमें रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत विस्तारा विचता तू पंच आप।

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कच नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित प्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षों प्रीत लगाए दिन हर प्रीत हो।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंसै भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, तिलंगड़िए मानरा काए।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

गुर प्रसाद नान गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपिया किसको बलिहार, किसके संग तरै संसार। कहो नानक।

तो अनुपव पावे। पानावारी हुए कर खरसार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो ना

हरतिया कथा कहानिया गुरमीत सुनाया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले।

समझाया ए आप ते परिवार स्यों सब जगत छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर केतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ हों गुरु वित्तों सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना पुखो सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वलदाने हो सतगुरु को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर इक रंग है आपे बहुरंग।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी।

देव कतेव उत्तरा पाए, दिल का फिक्र न जाए, सुखदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

क्या करी, नामे के स्वामी जसवंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुदा आमद

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना। अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

होईन राजमाव जपो ताए तो नामा अवर मेरा फुल कामा रहाओ ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मतिया इन दिद अमृत पावो मन संपट जित अक्षर नावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न को

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सो चाकर होए, जल तल मैयल रव रहा सोए, हमने चंगे।

तीरथ मंजब सन कुट कुट जिया खावणे बगे ना कहियन। सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलन से फल कम न आवनी ते गुण मैं तन हन। अंगले पार उठाया दूगर वाट बहुत अक्की लोड़ी ना लहा हों चर लंगा कित। चाकरिया चंगियाईया अवर स्याणप कित नानक नाम संभाल तू बद्दा चुकै जित। सूही महला पहला जप तपता बंद देरला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंख सुहेला। तेरा एको नाम मजीठड़ा रखा मेरा चोला सग रंग तोला राव साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िया मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई। हों मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला। नानक तह कहे लियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा। सुही महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करें पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर प्रकार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देवे दीखिया। चाले सतगुर पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाई नाहे मूले पुछ तिस छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस। कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते कोए चाहे उसारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो किस पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तो हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वर पाए सी मत को जाने जा।

सतगुरु प्रसाद। जोग ना संसार, जोग ना दंड, जोग ना पसंद कराई है, जोग ना मुंडी मूल मुडाया है, जोग ना सुनी वाई है, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाई है, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहीं सोई रहा, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दिशंकर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पीते कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत कौ पाई है, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई।

कतहू तीतर सो सो टोली इन बिध चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना वे तिल

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुखे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ियो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से बाल गलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर बौर ना होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंद आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे वो तेरे, सुखने सुख न होई, ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, तेरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे दया प्यार सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरुमत नगरी खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा टूट टुडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुरमस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुठा।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साध लोभाई। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गा।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदर दाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। राव रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पै।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध प्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

बरना साको तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब, मैं कुछ दिन अवरना कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर साओ नाही जिस तै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, त्यो नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुद पे आप सुनाई है, बुरा पला तुद सब किस तू जाए, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुद सब किस तू जाए, तुद पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत कराई, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया।

कर सकिए, अपना कीता किछु ना होवे, जो हर पावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साकें, जो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कारे लाया, जिहा तू हुक्म करे सेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हौ आख ना साका, हौ मूरख मुगद निचान, जन नानक को हर बस।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवां। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजे अभिमाने। तैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभु अविनाशी रहे।

सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुणकंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा, सेज बिछाई सर्द अपारा। नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा, तुम क्यों हियो मिलन प्रवताई। खोज चरयो देखो प्रह जाई, सुन सदेश रो प्रह गृह सेज बिछाई। प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीर निमानो। मिल साजन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती पिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे।

हुए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी सब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह तिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन तरसे चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वजह आई तुम सुखदा से पुरुष आई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाए चूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहि साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहबी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम लोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

तह गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करें हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा के दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ

कृपा निधान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरै दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जाको बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं जाने।

जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी,

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पति पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया तिन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो कित कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे को चार माटी का भांडा अत कुटीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे नी जय सूही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवां, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवां, गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवां, दर्शन देख जीवा।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जनता की, जन्म जन्म के

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा रहाओ साथ संगत क्यों प्रीत बन आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माजरे पज दिन नित रहने जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ सर्त विकार दो कर चारक राम रतन रिद तिल नहीं तारक परण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी सुही महला पंजवा साथ संग तरे पै सागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुर पूरे मिल पाप सजायण रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल साज सुहाओ आठ पैर पार ब्रह्म त्याइए पूर्व लिखत होए ता पाइए शरण पए जप दीन दयाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा कर का काज ना जानी रूड़ा चूथे तंदे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा ते राम रसायन अंदिन माते वहाँ पकर प्रभ आपे काटे जन जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद नहीं चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याए हर चरण मंची ने ताते करते अस्थिर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी ताते काटी जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई सुही महला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा किस दिन दूजा और ना कोई आपके थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ नानक रखा आपे होआ तुही महला पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग परा

दया न पाई, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण शरण नानक गत पाई, राग सूही महला पंजवा कर चौथा।

ना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतो खाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर देत्या जे रच लो भाए सब किस तुम रह हाँ।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

गुरिया मोहन लाल ना, जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध प्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया। सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पसारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौं कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अप।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा विसरे नाही जित तू कभू सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग तिन शरणाई पाया। रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

निमुख सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल पर ही जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौ वर्णा को सांझा। गुरुमुख नाम जपे उदरे सो कल में, कट कट नानक माजा। सोई महला पंजवा, जो कुछ करे सोई प्रभ माने। ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई। जिन प्रभ के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई। भगता बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल में यल सोई। रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे। जे हा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे। जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने। कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने। सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पे तेरी शरण आई। तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे। रहाओ अंध कूप से काढ़ लिए तुम, आप पे कृपा।

पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटे कतू साची देहे आनी कृपा करो कब करने हारे तेरी बस निराली। जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुगद अजान अगे।

नानक को प्रभु कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

ते संग पाए। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन।

करिए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर सात संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया, चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुरु।

सीमा गुणसार अंतर तू वसे मन माहे सहजे रस रसे मूरख मन समझाए आँखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है मरसी हो विडाना मन तन पंग है गुर की कार कमाए लावा तारे आनिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की।

जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाये। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की तेक नाम हो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सुरवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवे रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कह, जन्म

आपे रह समाए सो विस्माद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरुमुख वेख दूर।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवाल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग राता हो।

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगत बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ पगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निद पाई है, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, ए मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी,

सच्चा वे परवाह हो रहा हो। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिए वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुगद करन, मोह पा ले ते निंदका नरके कोर पवन, हे मन जैसा सेवै तैसा होवै ते हे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए, महापुरखा का बोलना होवे कितै पर खाए, ओए अमृत परे पर पूर है ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड़ पागी जे

मन मुख मन ना पिजई अपने चित कठोर सपै दुध पियाये अंदर हिसने कोर। आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार। सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना ठिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन। हो मैं मैला जग फिरे मर जमै वारो वार पया किरत कमावना कोई ना मेटन हार। संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार। गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए। हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सू लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमति सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर से वन, अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुट। हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरे ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारण, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, पुर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखी है शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभु पाए खाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सोही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए कृपा करें ता सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे से आई, जे कुख देहे ता इत ही राजा दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सोखाई। नानक गरीब कह पया द्वार है हर मेल लहो वड्याई। अखी ताड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाए। वार वार जाए गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसे पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। ज्यो धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई।

जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

दिखिया कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

जान ना पाईए प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना, महल न पावे फिरत बेगाना। सगल ब्याज कै वस्तर दीना, फिरत प्यास जो जलबिन मीना, कछु सियान उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कब हो न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान समंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाइए, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा।

काडिया जिनाने हो तू जाने लगा शूर मरों से वाडिया हों ना छोड़ो कंठ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिरो महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासु से तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मुदातड़ी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हु साहो हों कह न सका गुण तेरिया सहिया कऊ असंख मंजो हव बदानिया चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां नाम निधान अपार पगता मन वसे जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंदिया नरक सुरक अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सो तत विचारिया नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो राग सुही महला पहला कुछ जी ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सो रावया से अंबी छावड़िए जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हों सुख वसा

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

जियो हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो हर पग खजाना बख्शिया गुरु नानक किया फसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो जो गुरु

वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ नव मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बालपन रणे का बिन फिर तन कुमलाणी।

जैसी आशा तैसी मनसा पूरे या पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे नानक में वर्षा चा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बन जा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपाया करते कर पाया नेत न सके कोई जान जी ना रहने केवल रब रहा त्यो लोई माया निराशी रोए बिचुनी बाली बाले हेते

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमति समाए। राग सुहि मैला पहला, संत कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हम कर साजने आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, हम दिन मेल पया मन मानिया, कर मंदर सोहाए, पंच शब्द अनहद वाजे, हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो।

आए, काल विकाल पै देवा ने मन राख्या गुरु ठाए, नानक गुरु सबद जलाए गुरु संगम प्रभ पाए। राजसू ही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आप नड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाए, नानक साजन कहो।

गुण संग्रहण सी खरी सर सी जहाँ रावी रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदासे तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सत्ताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

गुरु प्रसाद। राग सुई छंत महला पहला कर चौथा। जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया, दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया। वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया, जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया। हौ बलिहारी साजना मीता वरीता, ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता। लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे, जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गह रहे। सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता, हौ बलिहारी साजना मीता वरीता। गुणा को होवे वासला कड वास नहीं जय, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय। सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए, पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। जिथे जाए गई है भला कही है चोल अमृत पी जय। गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय। आप करे किस आप

आखणता को जाई है जे फूलड़ा होए। जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले। सुने देखे बाद कहे है दान खन मंगिया देवे। दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे ना कोई। सूरी महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले। इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई। साहिब सो सालाही है जिन कारण किया। मैं लागी मन मैले है किने अमृत पिया। मत अमृत पिया ए मन दिया गुर पे मोल कराया। आप नड़ा प्रव सहज पछाता जामन सा फैलाया। इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया। साहिब सो सालाही है जिन जग तो पाया। आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता। प्रीतम से मन मान्या हर से तीराता। साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया। पंच पू नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सौ।

कौन अकेवे तंस मंत्र पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजे गुर सबदी सच जानिया साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करें रलिया करम करम सबाया अठ हठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेसी है क्यों पादर जाने आप सहमत होछिए क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन सर देसी जेती है सब देश पर आए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सत सबद पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पा।

गुरमुख फल पावो हर नाम से आवो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कार्य सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो।

तिन जन्म मरण पौ पागा। अंदरों दुर्मत तूजी खोई सो जन हर लिव लागा। जिनको कृपा पीनी मेरे स्वामी तिन अंदिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा। गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविक सब गवाए। सब को तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा। जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही। हर गुण गावे तृप्त अभाई हर गुण गाए सदा तृप्तासी। फिर भूख न लागे आए जय जिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा करती जा। भगत जना की हर जियो राखे है

आप वखाणी। भगतां की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे है जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी। हम दिन भगत करे दिन राती कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे हम दिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सत सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कार साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया। हर जन ऊंचे सदी ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया। सुही महला तीजा, सबद सच्चै सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौ मैं सब किल काटे, साथ रखिया उधारे राम। सत रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर फल जल करण न होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई। नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई, मरे न कोई, गर्भ न जूनी वासा। ज्योति ज्योत मिलाई, सच समाये, सच नाये प्रगासा। जिन्नी सच जाता, से सच्चे होए, हम दिन सच ध्यान। नानक सच नाम जिन हृदय वस्या, ना बिछड़ दुख पायन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, चित कर सोहला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वर्तै सचो बोले, जो सच करे सो होई। जय देखा तै सच पसरिया, और न दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे, मर जन में दूजा होई। नानक सब कुछ आपे करता, आप करावे सोई।

तित तन मैल न राती, हर प्रव राती, मेरा प्रव मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रव अपना विच्चों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती। फिर रावे रंग रातड़िए, फिर का महल तिन पाया राम, सो सहो अत निर्मल दाता, जिन विच्चों आप गवाया राम। विच्चों मो चुकाया जा हर पाया, हर कामन मन पानी, अंजन गुण गावे नित साचे, कच्चे अकत कहानी।

नाम के रंग रवे रंग राशी जिन हर से की चितलाया कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरुमति मन

हर कै सबद सुभाए राम, मिल सबद सुभाए आप गवाए, रंग सो रलिया माने, से सुखाली जा प्रपाया, हर हर नाम समाने। नानक सुहागन सावड़ पागी, जे चले सतगुरु भाए।

दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया काट काट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया।

गुरुदाता हर हर नाम समाया राम हर तूर देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नाम सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम के आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुरु गुरपुरा।

अनहद शब्द बजाए। हर चीज की लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिया अकप कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक पाग जियो, जन नाम बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाव मन सहज पया हर पाया बलराम जियो, गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंदिन हर लिवलाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहे लिवलाए, वड्डे पाग गुर पूरा पाई, अंजन नाम ते आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पाए पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिनती पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हुआ वासा, हर मंगल रस रसन

सात शब्द विलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

आई राम अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

पाथ न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन बिद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वडिआई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूरी महला चौथा हर पंजवां।

हम मन सन देवा सतगुरु मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू।

चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया अंता तन कर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, ने चल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जाए संत ना की जाए, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो।

हर नाम जप वड पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आ गए। अनाथ सबद सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रह।

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत मुस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तत सोई।

कर मेरा मत सोई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तुते आई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम, हो कुछ नाही, एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम, सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन

की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हौ वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यो मन माना। प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा।

साजन को सतगुरु मेरा पूरा इस दिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पौना राम जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सर कुर्बाना ऐसा गुरु वडका गी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संताप है नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन के वस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सकल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया है मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए सोही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जम पंख सा दे दुख ना व्यापे कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सह सियाना कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पाव सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नींव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बण आई आनंदा वजह नित वाजे
पार ब्रह्म मन उपाराम गुरुमुखे सच करने सारी बिन से प्रम पैच उठाराम अमहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशि राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखे गामी हल्प पल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सुही मैला पंजवा पै सागरो पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोलखड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी करिय बहुत न मरिय चूके आवन जाना जो किछ करे सोई फल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे मित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप नरे प्रभ आप सिगारी सोभावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया पुत पाई सिख बिगाते गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिया जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सब सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम आज जुगाद पवितन का राखा सो प्रभ कया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतिपाला।

कि गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे चुकुनी है। सूही महला पंजवा संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नव निद सिद्ध दीने करते तोट ना आवे काई राम खास खर्चक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ ना थे दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सवाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या विचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे सात संगत संग बनी जिन उद्दम की आकाल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुण्य क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती ममता ने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सवा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर बिशन पाई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुनजन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सूहै वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए वियोग। गुरमुख होवे सो पलटिया

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचराओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सुहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सू है वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखनी जो प्रव छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सोदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सुहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विधान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार, मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता, सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंका नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए, नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही किस रूप न ना रिखिया, नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया, सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया।

रात कारण तन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चले, फिर पछतावा होए महला दूजा। बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले।

जाने सोई आपे शिष्ट उपायन आपे सुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई। श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दीवान गया। महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तो नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिदार सेजे तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मन खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक इहो तन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लहास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन कर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुर प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका

हर हर नाम सलाहिए सत्कार कमावे दूजी कारे लग्या फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाह।

क्यों ना मरी जा रोए जालग चितना आवई महला दूजा जा सुख पासे रावे हो दुख भी संभालियो नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक वे परवाओ है किस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर।

राम को नाम न कभू लीना, राम न जपो कवन मत लागे, मर जैवे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके

सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए।

क्यों रलिया माँ ने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया रहाओ करो अरदास गाव किस बाकी लेओ निबेर आज की राती किस भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक स्मार

हो जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला लेही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन दो पखीनी जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंख दुहेला संग न साथी गमन अकेला दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अम्बरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरा नो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।

तै साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोत पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी में पतली सह केरे बोला, दुद्दा थनी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चल सी डुमना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध।

शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुझ पासे, जो तुझ पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे पान, तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप चूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंध्यार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात न होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला। गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम खुले बौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जियोरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे, हो मरो दुखाली, सास दिरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा। हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर पुतंग सहत स्यों, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख वखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे, परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा। अतोले क्यों तोले आ जाए, दूजा होए तां सो जी पाए, किसते दूजा नाही कोए, किस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुखदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवती लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनों मेले सो निर्मल होए, जिसनों लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए। आपे लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए, अंदिन लागे सहित्याना। रहा
क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना। जब अपनी जोत खींचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे, आपे गुण निधाना। जो आप चलाए तिने कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा। इक ना कर मैं देव ले आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा खाद बनाया पूरे, वेखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चहु जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना। जत संजम तीरथ ओना, जुगा का कर्म है कल में की रथ हर नामा। जुग जुग आपो अपना।

कैद सुनत सबे सुख पावे मानत काहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हो तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सब ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सब रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई दर्शा तै गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे न जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहत्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई। जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अति मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ दृश्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ तो वै टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पव कारण हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मति जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा।
ते नर पाघीन दोचारी होय जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम दोहे थे कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाहत दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरतो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर तजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार दम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना पला सब कोई बाँच है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तुम्हें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरुखोत्तम, अम दिन अनद अनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिरें फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक,

सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे आप सब वरत है, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो, हर संत भगत पारनो, हर पर पूरे रहा जल फले, राम नाम नित गाये, हर दुख विसारनो राव। हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसारन हारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा। विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी। कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला।

हर कृपा मोह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो। क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ। परम चुलारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्व पुयंगा हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल सा गुरु मिलावे। हौ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर कुसमे लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल। जिन चाखिया तिस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनग रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल मैला कन्या सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत कई गुण गाए दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थानी रवे आप आज जुगा जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने उठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल मैला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोए अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोए निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नौ ही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम होताज। चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल मैला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान का बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक रहा। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुर देव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम आराधिय निर्मल मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होत जियो। मान महक ना सकती पाई सादा दासी कियो नानक से दशोभा वंते जो प्रभ अपने कियो।
हर चंदौरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसो वड़ पागणी सखिए संता संग समाये कहे दुख ना भूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये कहे जन्म ना मरण ना आन जाना निचल सरनी पाये प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आये दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतले सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए रहा अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल ना जाई चलना आप ही दुखत आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़ पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बना पकर सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया।

चरण कमल प्रभु के नित्य आओ, परम सुमज्जित प्रीतम पाओ रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसरना पाहु बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभु हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अटक कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभु दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। काम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुरु आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा, वन तृण त्रिभुवन हरया होए। सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का पैसो काल रहा। सात संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुणगान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आस पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई। नानक गुर पूरे शरणाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सब ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसर जोग। आए बसो कर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना, ए पुर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज अनंग सुख पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु, कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाया, नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया,
जो बालू कर वार बिन सत बार न ला गई जो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी तज गए करबार रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अटकनी ए जियो हुम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख करवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला तनवा लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा मैला कदे न हो गई नहला गै दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्श तेरा पार जम गुण तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद गुण थे तुम बख्शन हारे रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब कुछ दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों नै चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा निर्प हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अतागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे पून लागे रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाई जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा बिलावल महला

सुनो आप सुनो किस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आज को ते गणित नीता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर्शरीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ। रूप तूप सोगंधता का पर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोड़ते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आ गए पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत। नेकल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रभ ते खतनेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया सात संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी। जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अतनो जियरा फिर हों वारी। रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अकबारी। निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, तम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा से छूटी है दिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ तहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी ए हे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाय। चिंत अंदेशा गणत ताज, जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए।

देहाते ओए हमारे साजना हम उनकी देन जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिला अब आए वस्त संग हर साध कै पूरन आसाए पैदन से कुल लोक के पाए सुख थान।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो, देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभु जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाय। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ क्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरपूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्याप, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरिक उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाय। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभू ना विसरे। सो पुरख अपार चरण कमल स्यो रंग लगा, अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे पै परमा, सित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथिया बसमाद की अमृत तृपासया ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे।

नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा। हर पगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीवान परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी सबल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

सामग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैथर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना सब जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवतिया अथवा मोया।

करता करे काम को काटे कीवी से हस्ती करे टूटा ले गांडे अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत हमसे कछु ना होना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड बिलावल मेला पंजवा खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन के सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश ओ स्वरूप संतन कहें विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईसर सो अंतर सो बाहरे दिल से कहें परमा।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहा, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जम जपे हम दिन सब जागे, तंत मंत नह जोई तित चाख न लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

सारे तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या, दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नान की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणत हर सब जीव जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताए।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम, नानक के शरणागति कट कट सब जान। बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत, वद प्रताप अचरज रूप।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकी बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दियाए।

मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोस हमारे बख्शन अपनी कल तारी मन बांस फल दिते नानक बलिहारी।

थाकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो, सदा करो किरताए। अभय दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती, नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख कंजन, मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर, तेरे दृष्ट दृष्ट आए। अभिमान खोए खोए खोए खोई, हो मोको सतगुरु मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए, भगत वचन कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नाम।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेक नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

दात आख पहर गुण गावत प्रगट काम क्रोध स्तंभ के जात। त्रिपत अघाये पेट प्रव दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी।

सब हरजन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की कृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे पहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वडियाई मगन पे उहां संग

एक कह अपर अपारा, एक विस्थिरन एक संपूरन, एक कह प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आवत है, जासियों राज माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमई। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते होए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण ना साके एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहे सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक तो बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक तेतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंद बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निद। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

आई जो कालर पीत गिरी है रहाओ जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है पलो देख दुख परी है आठ पैर चितव नहीं पहुँचे बुरा चितवक चितवित मरी है निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया हर जन सो बाद उठरी है नानका राखा आप प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिए बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे देखत सुनत सदा संग हरे रहो काच बिहाजन कंचन छादन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होवन तोरा अनहोवन मीठा बिख्या में लपटाए जरे अंधकूप में परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभु हो दयारा गुर पेटे काटे बहा फरे बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पय आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहो त्यानप ते सब परिश्यानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे राखे अपने को काहू ना करते कछीना बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोसे कहो न मान्यो मन छीना बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहा निवरे दूत दुष्ट बैराई गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख

महला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख ना व्याप है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पालिया हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साची दर्गे का निशान जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोल किछ नाही। रहाओ कुल समूह उदरे खिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के गोहित पाए, पव सागर पार पर आही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा। रहाओ खिल में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहे रजंगा। कभु न बिसरै हिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगे। सर्व जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताकी बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए। जम दूतन को त्रास कहे, रहाओ जेते पुनः चरण से कीने। मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा। जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है। तुह पदार्थ बड काज नहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते। निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे। सुलही होए मुआ ना पात, रहाओ काट कुठार खसम सिर काटया। छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया। जिन

दो मैं थाम रखे गुर सूरे, हल्क पल्क तार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर पे खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जी के संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जाम।

जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, तर्क विकार निष्कोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

क्या जय जय पेखो तै ते नेरा साध मूरत गुर पे प्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बिलावल मैला पंजवा।

पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी माया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

आवत फिरत मद मावत दिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

उलझियो अलमकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे ते कह हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मेला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पहचानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जान।

जोग जग ने फल तुहे मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के।

तो ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही रहा, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

सब कोई कत कत बाद करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नामो भूले थाओ न कोई मन माया बंदे ओ सरजाल कट कट व्याप रहे।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख किया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंदाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधे।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर मैल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

आप ते आप खाए हो में ते अम दिन हर रस गीत गवैया। गुरुमुख परचय कंचन काया निरपो ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया छिन पल रह न सकूं बिन नाम है।

मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे है, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त है, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरुमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरुमुख आपके अलख लख।

सो मिटे ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहती।

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिलावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा। सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़या। अमर पिंड पहल साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मद

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृद अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया। हिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट।

मैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले, मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटके देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस विटों बल बल कुम गैया।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल।

प्रन्यास इत निमख रहन न जाए, वड पाद नानक पाए। प्रभु तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। ज्यो मीन जल सो हेत, अल कमल पिन ना पेत। ज्यो चकवी सूरज आस, नानक चरण के आस। ज्यो तरन परत परान, ज्यो लोभी है तन दान। ज्यो दूध जले संजोग, ज्यो महा खुद आरत भोग। ज्यो मात पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन

पंचभूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सचमन पाए। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सत्काल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड दया लिवलाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जीजंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर सेवै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के सबद हर दर

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह।

मिल एकत्र होए सहज होए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिगलागी बिलावल मेला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे बिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साथी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोप जनाया मलन मोह विकार नाके दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूज।

करें, मोहि तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है, मुख पर है हरे प्यास मेरी, जी जिया प्राण पते, लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते, चीत चित हो मित अंधारे, जो आस चतवी दिन चर है, नानक पयम तय प्रिय संग मिली, मछली नीर न विसरे, तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बनहरा, हर हरा स्वामी सुखे गामी, अनद मंगल रसना, नवल नव तन नाव बा

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गई दो चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, बड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम। नान

हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उरलि लाग सब तन मन हरिया होया मन छिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन जान चराग जन नानक जी।

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मेरा तीजा सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु सुआओ, मन हट कर्म कमावने फिर से जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। पौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जो वस्त मंगी है साई पाई है, जो नाम चित लाई है, गुहज गल जीव की चीच है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस्ती संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दै जिस पथरिया गुर कहते सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छपे ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे, मानस ते देवते पे सच्ची पगत जिस दे, हो मैं मार मिलायन गुर कै सब सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख ना सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस नीति चख मारी जा सके स्यों बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए, हर सुख पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम से आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मिले।

जो किछ हर करावे सो ओय करें, सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्ट गो लेकर सतगुर अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचो काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे, दुख विस्कार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे तो मनमुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले हो मैं मोह वधाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चुकलाया।

तिन अवर न कोय गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होय पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला कीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चों जाए। जो किस होए सो सहजे होए कहना किसु न जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए। मैला कीजा काल मार मनसा मने समानी अंतर निर्मल नाओ। अंधन जा गए कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो कुछ है क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले। अत कोई क्यों देवाए इो हर तन जोर की तय किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया किस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कैसी बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना

ना मरे ना ई हट विकाए गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारण शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरो हुकम बुद्ध निशान पुत्ती पाती जावाई सकी अगो पिछो टोल जिठा लायुन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शो से सब जान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल जे वे मुख होवे सो फिरे परिष्ठ थान।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सभारिया, अमृत

ताने तिस साथ गिरास सदा मन वसै जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसै हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

सूदे सूदे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव। बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जाइए रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीस बिलैया खइए रे, तनमंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाए न कर।

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाई है चुन

तैसे तरो पव जलने पारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बासना तजिए न जाई अनेक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपयो हमारे कुल कौने राम के हो जबकि माला नहीं निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए तुह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाथ नख बिद रहे करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द ले हो कैद कबीर सगल पाप खंडन संतें ले उदरे हो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पूपत शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा क्रम क्यू को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सीन तरम जब पगत ना कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया तो मिथ्याता की गगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए दिन की सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल डर मांडे ठांडे दरबार कुछ दिन सुर्त करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणम सुनिय सुदस तुम्हार मांगो काए रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा दुख सुदामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरस दाते चार पदार्थ देश न बार बिलावल डंडा मुंदरा सिंसा आधारी क्रम कै पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पज बवरे राव जिन तू जाते सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या फेकी क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुरु साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निजता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नरजा मन को ले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन मान्या।

बिलावल जिहे कुल साध दैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण दैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप।

सिंह शरण कत जाइए, जो जम्बुक ग्रास है रहाओ। एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले सुन कामना आवे। प्राण जो खाते

दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिर थी जाए रहा जो दिसे माया मोह कुटम।

वसाए। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब चढ़ाए। जे तुझ आस

दिन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए, गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याई है, जो खुन में किलिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब पुख लहासा, मेरे

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार अपनी दिशा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभु।

तित दिन नेड़े को ना सुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जा तो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बडना इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए ज्यो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैश चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

जो हर जन नीक जात सेवकान गौण महला चौथा हर अंतर जामी सब तय वरते जिहा हर कराए तेहा को करिये सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है हर दिन को मार जीवाल न साके ता मेरे मन कायत करई है रहाओ हर पर पंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत तरई है हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखई है हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासों मन क्या चो रही है मैं कपट सेवा की जय हर तेरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दैवा सब चित सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा तेई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा ते आए तू तुद लय छड़ई है गौण महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर कीर हमरी बेदन हर तब जान

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सांस

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की में आई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भाए ले, पग पारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझित कोड़

तू लाग पड़े कुटुंबायले, जो पंखी कत्र होए फिर बिछड़े, फिर संगत हर हर चायले। जैसे मीन रसन साद दिन से ओ मूठो मूर लोभायले, तू हो आ पंचवास वैरी के छूटे परसरन आयले। ओ किरपाल जीन दुख पंजन सब तुमरे जीजन पायले, पावो दान सदा दर्श देखा मिल नानक दास दसायले। रागौण महला पंजवा चौक दे कर दूजा।

ओ तट पर लो निमक मझार, जाकी गत निज कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए, आए ना जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने।

मिटय कोट अग मनुख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत कौन महला पंजवा नाम संग कीनु व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट गुरु संग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगी जत कट जात नामो ही मन लागा मीठा जल थल सब में नामो दीठा नामे दरगे मुख उजले नामे सगले पुल उदरे नाम हमारे कारज सीध नाम संग

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमानी को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण दियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जा का अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप अकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पग पुपहे लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाई है जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पवन से जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उधार एक निरंकार जाके नाम आधार सर्व जिया का जाने पेयो कृपा निधान निरंजन देओ पाव ब्रह्म जब पे कृपाल

गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुर मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक देह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता कावन लाग। गौण महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ, गुर बिना

वाले पुरुष भगवान गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा। गुर पूरा ताये

गुरु नानक नानक हर सोए गौण महला पंजवा। राम राम शंकर व्यवहार राम राम राम प्राण आधार राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सब रहो समाए। संत जना मिल बोलो राम सबते निर्मल पूरन काम रहाओ। राम राम।

पर उतारे सबते ऊच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास। गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत पोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत भी आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रवसार दिन पगती सब होए खुआर। गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ क्यों लागी सह समाद स्थान अंतर एक

हृदय हुए प्रगास, भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा, गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इत्पंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, पद अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मन तन निर्मल।

कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पतित पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़पागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको पोए ना सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछान। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत। हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार। हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा। गौण महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण। सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत। मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ। जंत अपने को दी जय हाथ। रहाओ सिमरत

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तक्षिण ताल, सोई संत जे पा

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

बत्ते अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही, गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार। तिसका अंग करे निरंकार, रहाओ मात गर्व में अगर न जो है, काम क्रोध लोभ।

तार अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला। ना एहो बिनसे ना एहो जाए, आज जुगा दी रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस शीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया। पाप पुण्य का इस लेप न लगे, कट कट अंतर सब ही जागे। तीन गुणा एक शक्ति उपाया, महा माया का की है छाया। अचल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ताकि गत मित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहार जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए। सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गौण अष्टपदिया मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरुदेव। सफल मूरत सफल जा की सेव, अंतर जामी पुरख विदाता। आठ पैर नाम रंग राता, गुरु गोविंद।

सब लोग संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल स्थान निंदक से गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता कह निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूरख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर में तन है तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौण बाणी कबीर जियो की, हर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ति क्रोध मूड में मारियो। हस्त पाग कै चीसा मारे, क्या मूरत कै हों।

दिया रहे, तीन बार पतिया पर लीना। मन कठोर अजमूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पग में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ, ना एहु जति कहा वैसे हो, ना एहु जोगी ना अवधूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को पाई रहाओ। ना एहु गिरही ना उदासी, ना एहु राज ना तीख मंगासी, ना इस पिंड ना रक्तू राती, ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती, ना एहु तपा कहा वै शेख, ना एहु जीव ना मरता देख, इस मरते को जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत सोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो डब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंधन तापे जाहे, एक दोए मंदर एक दोए बात, हमको साथर उनको खात, मूड पलोस कमर बद पोची।

के सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पज सरन कबीर गौंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का होए विनाश।

कार शंख को बिख बिखे संसार कर सीगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिस का बोझ

पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तऊ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीरथ रख किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े पूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना, गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जम से छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ, नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए

तोडे अन्न करे पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड, जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौंड बाणी नाम देव जी।

कौ न पूजे हर कीर्तना मा अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई हेरे

मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी। गुरमत राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा क्यों कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव। पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा

सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पुत माता, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक नीश।

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंडे। जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना, अभी कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक।

कहे नरहरि। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जा पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार कहे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे मेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तैरिया समाए। अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। किन बिद सागर तरिये, जीवतियां नह मरिये रहाओ। दुख दरवाजा रो रखवाला।

करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिये, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने, पचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सो, जिन गोए उठा ली करते बार न लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए।

पाए, प्रणवत नानक अगम सुनाए, गुरचेले की संग मिलाए। जीठा दारू भोजन खाए, छह दर्शन की सो जी पाए। राम कली मेला पहला, हम दौलत बेड़ी पाप पड़ी है, पवन लगे मत जाए। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, नीचो देव दे आए। गुर पार तारण हारिया, देव भगत पूरन अविनाशी। हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ, सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम। एक सिद्ध जिन त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी। अखर जिन को आया, जप तप संयम कर्म न जाना। नाम जपी प्रभु तेरा, गुर परमेश्वर नानक पेत्यो। साचे शब्द निबेरा, राम कली मेला पहला। सुरती सुर कर लाये एक, तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाए तुसे तू रख, तैन सदीवा।

प्रापत पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सच्चिया गल्ला दर

कौन बुझे दुध जाने उत्पुद चलत आप कर चीने आपे तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिन अरे उसन सीत बिद सोई ताकि गतमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन के सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ कुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबानी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं नीनी गुर

पाए शब्द तृप्ता से रहाओ। पंच बैल गडिया देहतारी, राम कला निभे पथ सारी। तार टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार। गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी। पुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंद जपे निरंकारी। सहज जगोता बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

जा कर पहला। सतयुग सच पहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तै रहे चार, गुरमुख बूझे को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई, रहाओ त्रेते इक कल कीनी दूर। पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझे सो जी होई। अंतर नाम वसे सुख होई, द्वापर दूजे दुबदा होए। परम पुलाने जाने दोए, द्वापर तरम दोए।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी हृदय प्रगास होवे लिव लागे गुरमत हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवे हर मानक बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर कार तली दिखलाया। पागहीन मन मुख नहीं लिया तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कह सो मुक्ता राम जपत सोहाए। रहाओ जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरणाए। हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे। अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावे। रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदरी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी रिद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां तिल न लाईए। हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित न लाईए। राम मोको हर जन कारे लाईए। हम पानी पखा पीसो संत आ गए पग मल मल तूर मुख लाईए। रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊंचे जो सतगुर मेल मिलाईए। सतगुर जेवड अवर न कोई मिल सतगुर पुरख त्याईए। सतगुर शरण परे तिन पाया ये ठाकुर लाज रखाईए। इक अपने स्वाये आए बहे गुर आ गए जो बगुल समाद लगाईए। बगुला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाईए। नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराईए। राम करी महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुरचरणी जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर दिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा।
सत गुरु दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उधारे जी दान गुरपूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुरु हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रहाओ कोट कोट से किस्त्यावे तांका अंक न पावे पारे हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वडा वडेरा गुरमुख रखो उरदारे जे वड पाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट विकट हर जन है हर रास है कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर प्रत पारे।

फिर सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ से दुख ना व्यापे कोई रहाओ काचे पांडे साज निवाजे अंतर जोत समाई जैसा लिखिया तुर करते हम कैसी कृत कमाई मन संसार किया।

सेब कमाओ आपस से ऊपर सब जानो तो दर्जे सुख पाओ संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ पर पंच छोड़े सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहज मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा न व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरु पूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा।

पासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी रामकली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई

पुरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै र बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिहवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुंगर साजा राम को नृत्यकारी।

कोई ओढ़ नील कोई सुपेद कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू कोई बांछे पुष्प कोई सुरगिंदू कहो नानक जिन हु

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई। रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे तू का तृप्त ना पावे।

अस्थिर क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई। हुन पाया गुरु गोसाई राव दूजा राम कली मेला पंजवा। करन करावन सोई आन न दिसे कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना। गुरुमुख मिलिया रंग माना और सोरे हर रस मीठा। गुरुमुख किने विर ले बीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम। पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी। अनद रूप प्रटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा। सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा।

पूरे सतगुर बज अनहद तूरे सतगुर रहाओ नेमा जा की गहर गंभीर होए निहाल दे जिस पीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले पर्या सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप।

पीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई कर पार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक वरण।

तानी संत जनी परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में देव दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माही यो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग।

आधार नीचल आसन बेसुमार दुगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे प्रम पे मोह न माया जाले सुन समाद प्रभु कृपाल ताका अंत न पारावार आपे गुप्त।

पास, संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कबू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास।

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

कर कर थापे वडे वडेरे, किन्हीं ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए, ताकि आशा पूर्ण होए, हर पगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रस गुरुमुख नाम निमख हृदय वस हर के नाम की वड्याई कीमत कह ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा सहज समाध तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कह हृदय वसै।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान तब आप

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभु।

रैन दिनस जपो हर नाओ आगे दरगे पावो थाओ सदा आनंद न होवी सोग कभू ना व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा परम गत

परमेश्वर स्वामी काटकों प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

नानक कर्म प्राप्त होए। राम कली महला पंजवा, दुलभ देह सवार जाए न दरगे हार, हालत पलत तुद होए वड्याई, अंत की बेला ले चढ़ाई। राम के गुण गाओ, हालत पलत हो है दो वै सुहेले, अचरज

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपूरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख।

एक अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे, कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओही त्याया।

बात नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग कर मन

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

ईंधन से बह संतर पा गए, माटी को जल बह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए।

सुन छिन औद कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे रहाओ। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उर्जाना। मानस जन्म दियो जे ठाकुर सोते क्यों बिसरायो

राम भगत जम कहा पौ पागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पै निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, हम दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गत अंतर पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंच शब्द संगारे, पार कर जाए न

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

तीरथ परम सुब्याज न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हट निज रह न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान।

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर ले वे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किच साथ न चाले, जो दिसे सब किसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रो में किसे सुनावे, पैसा गर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरुमुख समकर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरुमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका हे सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभु लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया

सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला औहठ हस्त मली कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे सतकट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सस लोके एहो तन सिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

बोध करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा तेसना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे।

चार न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए, एक सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए। पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे।

फारसे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जो

भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग ना

बुझ बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर दिन सब कुछ मेला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्म

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्द खाए पाए पूजा करें पर दूध नहीं जाने दूध पाए मन लाए

अंते नाम सकाई। अपना आप ना पछाणे संतो कूर करे वड्याई, पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछ

खंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचल।

कृपा तारी एक पेट करे फिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन भगत करे दिन राती राम नाम उधारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत ना हुई।

जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जाय मिलिए राम मुरारी अंगिन जाग।

की वडियाई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया और न करना जाई। आपे साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सरेवो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख ना लखना जाई, आपे मार्ग वाले आप

है जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावै पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग सो दे, बिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन।

आए ऐसे राखनहार दयाल। जब तक देखो तुम प्रतपाल रहा हो जल पीवत ज्यो तुखान तंत तन बिज सह गृह आवत संत लोभी का तन प्राण आधार क्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए क्यों हर जन राखे

संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे मैं अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गुर पूरी मत दिनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न

करते प्रब अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कहे नानक मन मेर सवारो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुख साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब कर सवा गए शब्द वाजे कला दूत कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तैस को हुआ तुद कर अनहद वाजे साची लिवे दिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एक नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा सिलग कटे जान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सत्य सवारिया कह नानक यू आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस इतना

सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरुमुख जिन्नी त्याया पवित्र माता पिता उत्तम सहित।

कर्म कमाए, सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोटा जाए, मन तो वो शब्द लागो हर्ष रहो चित लाए, कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए, जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बिता लिया, कह नानक जिन सच कजिया पूरे लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी, जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले, आप छद सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जो को गुर के बेमुख होवे।

जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समालिए कह नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे वित्तो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विच्चो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मनवन जारा हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत की तै जिच हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न पुसना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अमरा सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरा हर तुम मैं जोत रखी तातू जग में आया हर जोत रखी तुद विच तातू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हो।

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुरु चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुरु सब ज्ञानी हर

जग में आए कैसा तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीर राजा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से चितलाया, ए नेत्रों मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नगरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नगरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्ट होई, ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी, सच अलख विडानी ताकि गत कहीं न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी इतना दसवां द्वार दिखाया, कहे अनेक रूप नाव नवले किसका अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहेला साचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच प्यावे, सचो त्यावे जात रूपावे गुरमुख जिना बुझावे, वो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे।

हमारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

दियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो। हर पाना गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाना पावे, आनंद अनहद बजे बाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत पाई परवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिखिया परवाना फिरे नाही, गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाने अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल न पाया।

सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो।

हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो।

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

स्थिर तखत निवासी सचित सैदी बाणो। मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोए लड़ा प्रभ सोए लड़ा अनहद तुनिए सोए लड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याय सब किछ पाय मरे न आवे जाई। चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिए।

राखिन ना विसारिय। राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय। उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुरु चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मा

सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ता कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

बेअंत पूरन सुख सहज दाता कवन रसना गुणपणा। आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब।

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूरन आस जियो।

सर्व ठाई हर नाम नव निध ग्रह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया।

हमारे। बिन मिल बे शांत ना उपजे, तिल पल रहन ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडम

मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने चंत। हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो। सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो। ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर, वाट वटाऊ

ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करने गुर विचार अगम अगोचर।

तह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कही है किछ कह न जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया छिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरन मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत्सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत।

तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षों कर जाए छी जय दे खुले एक गंड छिया नित देखो जगहंड तूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूची जगत पुलाना।

माया निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटासी।

रंग राते बौड़ न पछोताये। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज करवासा पाये। पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा।

वनते टूडत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक।

दी हर पाई है मत को परम कुला है सोसा हो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर सचियारी सच संचिया।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा।

ती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये हर क्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याइए हर

विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखी है।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाई है सहज पाए जस लेओ क्या पवी है सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कवन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदा रजाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो।

आरोखाय औदु बोले ज्ञाने तीरथ नाय सुख फल पाय मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिदसाई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत विचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुर चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी।

एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइए सार नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरुमुख जोत निरंतर।

ताज कमावे गत मित सब दे पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवे सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाने जी जुगत सत जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया।

अंतर कमल प्रगास थिया जीव तुम्हारे ता सब किछ सूझे अंतर जाने सर्व दया नानक।

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचे वेद विचारी, गुरमुख परचे तरिये तारी, गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचे अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभ है सब परवार, गुरमुख जपिये अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द पेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार। गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए। गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए। गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इस नान, गुरमुख लागे सहज ध्यान। गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

सार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत विदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो।

गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहस्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हौ हौ मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगार है, बोले बाणी नानक विचार है, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधिया।

माने दूजा जाए इकत कार्याने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन।

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हों में प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुरु ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अरा दिया अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आ

पियो आत्म सुख तारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो शब्द औदू ताको चूके मन का पवना नदर करे तो सतगुर मिले ता निज कर वासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाने आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख हो मैं विचों खोवे तो नानक सहज समावे इहो मन ने चल हृदय वसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभि पवन कर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज कर आछे त्रिभवन जोत तो शब्द लह खावे दुख भूख साचे की साचे ही तृप्तास रह अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानक आखे सच सुभाखे सच रपे रंग कब हू न जावे जा इहो हिरदा दे न होती तो मन कैठे रहता ना भी कमल अस्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर सहता रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहा लिवलाई रकत बिंद की मड़ी

तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नावे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे, महला तीजा सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले, सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान, पौड़ी रात

ही सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्य